ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के ताज़ा जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जनसंख्या घटकर करीब 12.3 करोड़ रह गई है, जो 5 वर्षों में अब तक की सर्वाधिक गिरावट है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को 2025 राष्ट्रीय जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। जापान 1920 से हर 5 साल के अंतराल पर ये सर्वेक्षण करता आया है। ताज़ा सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले वर्ष 1 अक्टूबर तक देश की जनसंख्या 12 करोड़ 30 लाख

49,524 थी। यह आंकड़ा 2020 के पिछले सर्वेक्षण से 30,96,575 कम है, जो 2.5% की गिरावट है। जनसंख्या में 2015 के बाद से लगातार तीसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 2015 में जनसंख्या में पहली बार गिरावट आई थी। मंत्रालय की सितंबर तक अंतिम आंकड़े जारी करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार जापान सरकार ने आपदा तैयारी से जुड़ी एक नई मूल योजना का मसौदा तैयार किया है, जिसमें एक 10 वर्षीय कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य टोक्यो के ठीक नीचे आने वाले महाभूकंप से होने वाली मौतों की संख्या को आधे से भी कम करना है। पिछले वर्ष दिसंबर में एक सरकारी समिति ने भूकंप से होने वाले जानमाल के नुकसान के अनुमानों की समीक्षा की थी। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे ख़राब स्थिति में भूकंप से 18,000 लोगों की मौत हो सकती है और 4,02,000 इमारतें ध्वस्त या जलकर राख हो सकती हैं। इसके जवाब में सरकार ने आपदा न्यूनीकरण लक्ष्य और आपदा तैयारी उपाय निर्धारित करने वाली अपनी मूल योजना में संशोधन किया है। इस मसौदा योजना में अग्नि दुर्घटना रोकथाम प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है। ऐसी दुर्घटनाओं को लगभग 70% मौतों और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने का कारण माना जाता है। इनमें से एक उपाय ऐसे सर्किट ब्रेकर लगाना है जो तेज़ झटका भांपते ही बिजली की आपूर्ति काट देते हैं। इस मसौदे में 10 प्रीफेक्चरों के निर्दिष्ट क्षेत्रों की अधिकांश इमारतों में सर्किट ब्रेकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों में टोक्यो और उसके आसपास के खानागावा, साइतामा और चिबा प्रीफेक्चरों की सभी नगरपालिकाएं शामिल हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बृहस्पतिवार को टोक्यो में वार्ता की। दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। बैठक की शुरुआत में ताकायची ने कहा कि स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत से संबद्ध नवीनतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जापान और फिलीपींस का घनिष्ठ सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फिलीपींस जापान का एक सबसे करीबी और समान विचारधारा वाला साझेदार है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। वहीं मार्कोस ने कहा, आज की हमारी बैठक हमारे संबंधों को नई संभावनाओं की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। सुरक्षा के क्षेत्र में जापान और फिलीपींस जी सोमिया नामक समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत दोनों देश गोपनीय सैन्य जानकारी तुरंत प्राप्त करते हुए उसे साझा कर पाएंगे। जापान सरकार का कहना है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों की मदद करने वाले नाटो अभियान में जापानी आत्मरक्षा बल के 4 कर्मी भेजे जाएंगे। यूक्रेन को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के काम में समन्वय के लिए 2024 में जर्मनी में नाटो सुरक्षा सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नाटो सदस्य देशों के साथ मिलकर इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि 4 कर्मियों को जर्मनी भेजा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार वे जून से कमान में योजना और समन्वय संबंधी कार्यों में भाग लेंगे।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: इस महीने अमेरिका चीन शिखर वार्ता के बाद एशिया, अमेरिका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के रक्षा अधिकारी सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार से आरंभ इस सम्मेलन में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ भी भाग ले रहे हैं। चर्चा का एक मुख्य विषय ईरान की तनावपूर्ण स्थिति का एशिया पर पड़ने वाला प्रभाव हो सकता है। अन्य विषयों में ताइवान और दक्षिण चीन सागर से संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं होने की भी उम्मीद है। हेक्सेथ शनिवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके संदेश और एशियाई देशों की उस पर प्रतिक्रिया पर सबकी नजर टिकी होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के अनुसार इस्लामी गुट हमास पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने सेना को गाजा पट्टी पर नियंत्रण बढ़ाने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब हमारा 60% पर नियंत्रण है। नेतन्याहू का ताजा निर्देश इसे बढ़ाकर 70% करना है। अमरीका की अगुवाई में शांति योजना के तहत पिछले साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से 922 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना गाजा में रुक रुक कर हमले करती आई है। शांति योजना में इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है, लेकिन इस योजना पर अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ईरान संघर्ष के लंबा खिंचने से भारत के दो प्रमुख कृषि उत्पादों, मसालों और आम के निर्यात पर बुरा असर देखा जा रहा है। तिलहन से तेल निकालने वाली केरल की एक कंपनी खाड़ी देशों के साथ व्यापार करती रही है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य के बंद होने के बाद से उसे अपना माल भेजने के लिए अन्य मार्ग तलाशने पड़े हैं। कंपनी के अनुसार उसे परिवहन लागत में वृद्धि और समुद्री बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन मात्रा के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा आम उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा है। कर्नाटक के कुछ किसान पहले आम की फसल का 40% पश्चिम एशिया को निर्यात करते थे, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र को होने वाला समस्त निर्यात बंद हो गया है। बाहर न जाने के कारण उनके आम अब घरेलू बाजार में सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। अब दाम सामान्य कीमत का 1/4 से भी कम है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारे माश्ता का?
3: हाई।
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
3: युकी गा मितताई देस। 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: 日本には慣れましたか？
1: जापान की आदत हो गई।
0: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: ताम ने कहा,
3: युकी गा मितताई देस।
1: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: होक्काइडो नी इकिताई देस।
1: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
0: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो, ई ने।
1: होक्काइडो अच्छा है।

0: आज का मुख्य वाक्य है
1: यूकी गा मिताई देस,
0: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
2: इसमें
1: यूकी
2: का अर्थ है बर्फबारी और
1: मिताई देस
2: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
2: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
1: होक्काइडो नी इकिताई देसु,
2: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ, और दूसरा है
1: तोमोदाची नी आइताई देसु,
2: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: एक और जरूरी बात यह है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
2: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे यूकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूं, तो वाक्य बनेगा यूकी गा मिताई देस।
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
1: मिताई देस, यूकी गा मिताई देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला एक आदमी से पूछ रही है कि वे जापान में क्या करना चाहते हैं।
1: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
3: रामेन गा तबेताई देसु।
2: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा
1: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
0: जापान में क्या करना चाहते हैं।
1: निहोन दे
2: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
1: नानी
2: यानी क्या का उपयोग हुआ है। नानी की जगह आप हारूजी की तरह
1: दोन्ना कोतो
2: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम, और भाव है क्या।
1: शिताई
2: है क्रिया,
1: शिमास
2: यानी करना का ताई रूप।
0: इसके बाद आदमी ने उत्तर दिया
3: रामेन गा तबेताई देसु,
2: रामेन खाना चाहता हूँ।
0: इसमें
1: तबेताई
0: है क्रिया,
1: तबेमास
0: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का? रामेन गा तबेताई देसु।
2: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योतो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे।
0: मंदिर के नाम का उच्चारण है
1: किंग काकुजी, किंग काकुजी,
0: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
1: इकिमास, इकिमास।
0: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
1: किंकाकुजी नी इकिमास।
0: तो अब कोशिश कीजिए।
1: किंकाकुजी नी इकिताई देसु, किंकाकुजी नी इकिताई देसु।
2: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था, आप भी याद कर लीजिए।
1: दाइजोब, दाइजोब
0: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
1: दाइजोब देसु का?
0: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: निहोन नी वा नारेमाशिता का?
1: हाई।
4: 日本でどんなことがしたいですか?

0: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
1: 北海道、いいね。
0: あと友達に会いたいです。
2: おや、
1: 大丈夫？顔が赤いよ。
3: 春さんの知恵袋。
4: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी, इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
5: दोस्तों, जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
4: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
5: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
4: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
5: एक और जरूरी बात यह है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
4: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
5: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए
6: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के ताजा जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जनसंख्या घटकर करीब 12.3 करोड़ रह गई है, जो 5 वर्षों में अब तक की सर्वाधिक गिरावट है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को 2025 राष्ट्रीय जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। जापान 1920 से हर 5 साल के अंतराल पर ये सर्वेक्षण करता आया है। ताज़ा सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले वर्ष 1 अक्टूबर तक देश की जनसंख्या 12,30,49,524 थी। यह आंकड़ा 2020 के पिछले सर्वेक्षण से 30,96,575 कम है, जो 2.5% की गिरावट है। जनसंख्या में 2015 के बाद से लगातार तीसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 2015 में जनसंख्या में पहली बार गिरावट आई थी। मंत्रालय की सितंबर तक अंतिम आंकड़े जारी करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार जापान सरकार ने आपदा तैयारी से जुड़ी एक नई मूल योजना का मसौदा तैयार किया है, जिसमें एक 10 वर्षीय कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य टोक्यो के ठीक नीचे आने वाले महाभूकंप से होने वाली मौतों की संख्या को आधे से भी कम करना है। पिछले वर्ष दिसंबर में एक सरकारी समिति ने भूकंप से होने वाले जानमाल के नुकसान के अनुमानों की समीक्षा की थी। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे ख़राब स्थिति में भूकंप से 18,000 लोगों की मौत हो सकती है और 4,02,000 इमारतें ध्वस्त या जलकर राख हो सकती हैं। इसके जवाब में सरकार ने आपदा न्यूनीकरण लक्ष्य और आपदा तैयारी उपाय निर्धारित करने वाली अपनी मूल योजना में संशोधन किया है। इस मसौदा योजना में अग्नि दुर्घटना रोकथाम प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है। ऐसी दुर्घटनाओं को लगभग 70% मौतों और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने का कारण माना जाता है। इनमें से एक उपाय ऐसे सर्किट ब्रेकर लगाना है जो तेज झटका भांपते ही बिजली की आपूर्ति काट देते हैं। इस मसौदे में 10 प्रीफेक्चरों के निर्दिष्ट क्षेत्रों की अधिकांश इमारतों में सर्किट ब्रेकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों में टोक्यो और उसके आसपास के खानागावा, साइतामा और चिबा प्रीफेक्चरों की सभी नगरपालिकाएं शामिल हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बृहस्पतिवार को टोक्यो में वार्ता की। दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। बैठक की शुरुआत में ताकायची ने कहा कि स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत से संबद्ध नवीनतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जापान और फिलीपींस का घनिष्ठ सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फिलीपींस जापान का एक सबसे करीबी और समान विचारधारा वाला साझेदार है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। वहीं मार्कोस ने कहा, आज की हमारी बैठक हमारे संबंधों को नई संभावनाओं की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। सुरक्षा के क्षेत्र में जापान और फिलीपींस जी सोमिया नामक समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत दोनों देश गोपनीय सैन्य जानकारी तुरंत प्राप्त करते हुए उसे साझा कर पाएंगे। जापान सरकार का कहना है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों की मदद करने वाले नाटो अभियान में जापानी आत्मरक्षा बल के 4 कर्मी भेजे जाएंगे। यूक्रेन को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के काम में समन्वय के लिए 2024 में जर्मनी में नाटो सुरक्षा सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नाटो सदस्य देशों के साथ मिलकर इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि 4 कर्मियों को जर्मनी भेजा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार वे जून से कमान में योजना
और समन्वय संबंधी कार्यों में भाग लेंगे।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: इस महीने अमेरिका चीन शिखर वार्ता के बाद एशिया, अमेरिका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के रक्षा अधिकारी सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार से आरंभ इस सम्मेलन में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ भी भाग ले रहे हैं। चर्चा का एक मुख्य विषय ईरान की तनावपूर्ण स्थिति का एशिया पर पड़ने वाला प्रभाव हो सकता है। अन्य विषयों में ताइवान और दक्षिण चीन सागर से संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं होने की भी उम्मीद है। हेक्सेथ शनिवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके संदेश और एशियाई देशों की उस पर प्रतिक्रिया पर सबकी नजर टिकी होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के अनुसार इस्लामी गुट हमास पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने सेना को गाजा पट्टी पर नियंत्रण बढ़ाने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब हमारा 60%

नियंत्रण है। नेतन्याहू का ताजा निर्देश इसे बढ़ाकर 70% करना है। अमेरिका की अगुवाई में शांति योजना के तहत पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से 922 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना गाजा में रुक रुक कर हमले करती आई है। शांति योजना में इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है, लेकिन इस योजना पर अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ईरान संघर्ष के लंबा खिंचने से भारत के दो प्रमुख कृषि उत्पादों मसालों और आम के निर्यात पर बुरा असर देखा जा रहा है। तिलहन से तेल निकालने वाली केरल की एक कंपनी खाड़ी देशों के साथ व्यापार करती रही है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य के बंद होने के बाद से उसे अपना माल भेजने के लिए अन्य मार्ग तलाशने पड़े हैं। कंपनी के अनुसार उसे परिवहन लागत में वृद्धि और समुद्री बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन मात्रा के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा आम उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा है। कर्नाटक के कुछ किसान पहले आम की फसल का 40% पश्चिम एशिया को निर्यात करते थे, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र को होने वाला समस्त निर्यात बंद हो गया है। बाहर न जाने के कारण उनके आम अब घरेलू बाजार में सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। अब दाम सामान्य कीमत का 1/4 से भी कम है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
3: हाय।
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
3: यूकी गा मिताई देस। 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: 日本に慣れましたか？
1: जापान की आदत हो गई।
0: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: ताम ने कहा,
3: युकी गा मिताई देस।
1: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: होक्काइडो नी इकिताई देस।
1: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
0: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो, ई ने।
1: होक्काइडो अच्छा है।
0: ताम ने आगे कहा,
3: अतो तमोदाचि नी आईताई देस।
1: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: हारूजी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
2: ओया,
1: अरे।
0: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
2: डाइजोबु,
1: ठीक तो हो?
2: काओगा अकाइयो,
1: चेहरा लाल हो गया है।
0: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।

0: रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
1: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
2: होक्काइडो नी इकिताई देसु,
1: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ, और दूसरा है
2: तोमोदाचि नी आइताई देसु,
1: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: एक और जरूरी बात यह है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
1: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूं, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देस।
0: तो अब वाक्य सुनिए और साथ में बोलकर उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
2: मिताई देस, युकी गा मिताई देस।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक महिला एक आदमी से पूछ रही है कि वे जापान में क्या करना चाहते हैं।
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का?
4: रामेन गा तबेताई देसु।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा
3: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का,
0: जापान में क्या करना चाहते हैं।
2: निहोन दे
1: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
2: नानी
1: यानी क्या का उपयोग हुआ है। नानी की जगह आप हारूजी की तरह
2: दोन्ना कोतो
1: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम, और भाव है क्या।
2: शिताई
1: है क्रिया,
2: शिमास
1: यानी करना का ताई रूप।
0: इसके बाद आदमी ने उत्तर दिया
4: रामेन गा तबेताई देस,
1: रामेन खाना चाहता हूँ।
0: इसमें
2: तबेताई
0: है क्रिया,
2: तबेमास
0: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
2: निहोन दे नानी गा शिताई देसु का? रामेन गा तबेताई देसु।
1: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योतो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे।
0: मंदिर के नाम का उच्चारण है
2: किंग काकुजी, किंग काकुजी,
0: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
2: इकिमास, इकिमास।
0: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
2: किंकाकुजी नी इकिमास।
0: तो अब कोशिश कीजिए।
3: किंकाकुजी नी इकिताई देसु, किंकाकुजी नी इकिताई देसु।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था, आप भी याद कर लीजिए।
3: दाइजोबु, दाइजोबु
0: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
2: दाइजोबु देसु का।
0: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
5: निहोन नी वा नारेमाशिता का?日本でどんなことがしたいですか？
6: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
5: 北海道、いいね。
6: あと、友達に会いたいです。
5: おや？
7: 大丈夫？顔が赤いよ。
1: और अब बारी है अंश हारूजी की सलाह की। आज की बातचीत हारुसान हाउस की बैठक में हो रही थी।

0: इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
1: दोस्तों, जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
0: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
1: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
0: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
1: एक और जरूरी बात ये है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतार कर घर की चप्पल पहनना आम है।
0: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। एशिया, अमेरिका, यूरोप और दीगर खित्तों के दिफाई हुक्काम ने कबल अज़ीं रवा माह अमेरिका और चीन के सरबराही इजलास के बाद सिंगापुर में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया है। शंग्रीला डायलॉग जुमे को शुरू हुआ। मंदूबीन में जापानी वजीर दिफा कोइज़ुमी शिनजिरो और अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ शामिल हैं। ईरान की कशीदा सूरत हाल के एशिया पर असरात से मुतालिक बातचीत का इम्कान है। दीगर मौजूआत में मुमकिन तौर पर ताइवान और बुहरा जनूबी चीन से मुतालिका मसाइल जैसे इलाकाई सलामती के चैलेंजेस शामिल होंगे। दो तरफा और कसीर फरीकी बातचीत बतवक्को है। हेगसेथ हफ्ते को तकरीर करने वाले हैं। उनके पैगाम और इस पर एशियाई ममालिक के रद्द अमल पर तवज्जो मरकूज होगी। हिंद बहरुल काहिल में जापान के किरदार के हवाले से भी दिलचस्पी बढ़ रही है। जापानी वजीर आजम ताकाइची सानाए ने कबल अज़ीं रवा माह खारजा पॉलिसी के हवाले से अपनी तकरीर में आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल का एक तजदीद शुदा विजन पेश किया था। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने अपने मुल्क की फ़ौज को गजा की पट्टी पर कंट्रोल बढ़ाने की हिदायत दी है ताकि इस्लामी ग्रुप हमास पर दबाव बढ़ाया जा सके। नेतन्याहू ने जुमेरात को कहा कि अब हमारे पास 60% कंट्रोल है और उनकी हिदायत है कि इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाए। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान अमरीकी ज़ेर क़यादत अमन मनसूबे पर मबनी जंगबंदी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अमल में आई थी। ताहम इस पट्टी के सेहत हुकाम ने जुमेरात को बताया कि जंगबंदी के नफाज के बाद से अब तक 922 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में वक्फे वक्फे से हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमन मनसूबे में इसराइली फ़ौजियों का इनखला और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। ताहम अभी तक इस मंसूबे पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। मशरक़ वुस्ता में तूल पकड़ते तनाज़े का असर भारत की दो बड़ी ज़रई मसनूआत मसाला जात और आम की बरामदात पर पड़ रहा है। मसालों से तेल बनाने वाली जनूबी रियासत केराला में एक कंपनी खलीजी ममालिक के साथ तजारत करती रही है। आबनाए हुरमुस की बंदिश के बाद इसे अपनी तरसील के लिए दूसरे रास्ते तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी का कहना है कि इसे नकलोहमल के ज़्यादा अखराज

0: आम हैं। तहम कई घरों में दोनों तरह के कमरे होते हैं। इनमें कम से कम एक ततामी वाला यानी जापानी तरह का कमरा होता है।
1: ततामी वाले कमरे में रहने का तसव्वुर भी काफी अच्छा मालूम होता है।
0: जी बिल्कुल, वैसे मगरबी या जापानी तरह से कतई नजर, जापान में घरों में दाखिल होते ही जूते उतार दिए जाते हैं। घरों के अंदर अक्सर स्लीपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जापानी तर्ज के कमरे में दाखिल होते वक्त वो भी उतार दिए जाते हैं। सरकंडों से बनी ततामी पर नंगे पैर चलना बहुत आरामदेह महसूस होता है। सरकंडों की खुशबू भी सुकून बख्श होती है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के ताज़ा जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जनसंख्या घटकर करीब 12.3 करोड़ रह गई है, जो 5 वर्षों में अब तक की सर्वाधिक गिरावट है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को 2025 राष्ट्रीय जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। जापान 1920 से हर 5 साल के अंतराल पर ये सर्वेक्षण करता आया है। ताज़ा सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले वर्ष 1 अक्टूबर तक देश की जनसंख्या 12,30,49,524 थी। यह आंकड़ा 2020 के पिछले सर्वेक्षण से 30,96,575 कम है, जो 2.5% की गिरावट है। जनसंख्या में 2015 के बाद से लगातार तीसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 2015 में जनसंख्या में पहली बार गिरावट आई थी। मंत्रालय की सितंबर तक अंतिम आंकड़े जारी करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार जापान सरकार ने आपदा तैयारी से जुड़ी एक नई मूल योजना का मसौदा तैयार किया है, जिसमें एक 10 वर्षीय कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य टोक्यो के ठीक नीचे आने वाले महाभूकंप से होने वाली मौतों की संख्या को आधे से भी कम करना है। पिछले वर्ष दिसंबर में एक सरकारी समिति ने भूकंप से होने वाले जानमाल के नुकसान के अनुमानों की समीक्षा की थी। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे ख़राब स्थिति में भूकंप से 18,000 लोगों की मौत हो सकती है और 4,02,000 इमारतें ध्वस्त या जलकर राख हो सकती हैं। इसके जवाब में सरकार ने आपदा न्यूनीकरण लक्ष्य और आपदा तैयारी उपाय निर्धारित करने वाली अपनी मूल योजना में संशोधन किया है। इस मसौदा योजना में अग्नि दुर्घटना रोकथाम प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है। ऐसी दुर्घटनाओं को लगभग 70% मौतों और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने का कारण माना जाता है। इनमें से एक उपाय ऐसे सर्किट ब्रेकर लगाना है जो तेज़ झटका भांपते ही बिजली की आपूर्ति काट देते हैं। इस मसौदे में 10 प्रीफेक्चरों के निर्दिष्ट क्षेत्रों की अधिकांश इमारतों में सर्किट ब्रेकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों में टोक्यो और उसके आसपास के खानागावा, साइतामा और चिबा प्रीफेक्चरों की सभी नगर पालिकाएँ शामिल हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बृहस्पतिवार को टोक्यो में वार्ता की। दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक

सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। बैठक की शुरुआत में ताकाइची ने कहा कि स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत से संबद्ध नवीनतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जापान और फिलीपींस का घनिष्ठ सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फिलीपींस जापान का एक सबसे करीबी और समान विचारधारा वाला साझेदार है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। वहीं मार्कोस ने कहा, आज की हमारी बैठक हमारे संबंधों को नई संभावनाओं की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। सुरक्षा के क्षेत्र में जापान और फिलीपींस जी सोमिया नामक समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत दोनों देश गोपनीय सैन्य जानकारी तुरंत प्राप्त करते हुए उसे साझा कर पाएंगे। जापान सरकार का कहना है कि उक्रेनी सशस्त्र बलों की मदद करने वाले नाटो अभियान में जापानी आत्मरक्षा बल के 4 कर्मी भेजे जाएंगे। उक्रेन को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के काम में समन्वय के लिए 2024 में जर्मनी में नाटो सुरक्षा सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नाटो सदस्य देशों के साथ मिलकर इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि 4 कर्मियों को जर्मनी भेजा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार वे जून से कमान में योजना और समन्वय संबंधी कार्यों में भाग लेंगे।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: इस महीने अमेरिका चीन शिखर वार्ता के बाद एशिया, अमेरिका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के रक्षा अधिकारी सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार से आरंभ इस सम्मेलन में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ भी भाग ले रहे हैं। चर्चा का एक मुख्य विषय ईरान की तनावपूर्ण स्थिति का एशिया पर पड़ने वाला प्रभाव हो सकता है। अन्य विषयों में ताइवान और दक्षिण चीन सागर से संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं होने की भी उम्मीद है। हेक्सेथ शनिवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके संदेश और एशियाई देशों की उस पर प्रतिक्रिया पर सबकी नजर टिकी होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के अनुसार इस्लामी गुट हमास पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने सेना को गाजा पट्टी पर नियंत्रण बढ़ाने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब हमारा 60% पर नियंत्रण है। नेतन्याहू का ताजा निर्देश इसे बढ़ाकर 70% करना है। अमरीका की अगुवाई में शांति योजना के तहत पिछले साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से 922 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना गाजा में रुक रुक कर हमले करती आई है। शांति योजना में इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है, लेकिन इस योजना पर अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ईरान संघर्ष के लंबा खिंचने से भारत के दो प्रमुख कृषि उत्पादों, मसालों और आम के निर्यात पर बुरा असर देखा जा रहा है। तिलहन से तेल निकालने वाली केरल की एक कंपनी खाड़ी देशों के साथ व्यापार करती रही है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य के बंद होने के बाद से उसे अपना माल भेजने के लिए अन्य मार्ग तलाशने पड़े हैं। कंपनी के अनुसार उसे परिवहन लागत में वृद्धि और समुद्री बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन मात्रा के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा आम उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा है। कर्नाटक के कुछ किसान पहले आम की फसल का 40% पश्चिम एशिया को निर्यात करते थे, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र को होने वाला समस्त निर्यात बंद हो गया है। बाहर न जाने के कारण उनके आम अब घरेलू बाजार में सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। अब दाम सामान्य कीमत का 1/4 से भी कम है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
0: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 13वें पाठ में सीखेंगे ये बताना कि आप क्या करना चाहते हैं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा तांग रोबोट मकान मालकिन हारूजी और चीन से आई फोटोग्राफर मिया से बात कर रही है। सब साझा आवास हारूसान हाउस की बैठक में हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 13वें पाठ की बातचीत।
2: निहोन नी वा नारेमाश्ता का?
3: हाय।
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देस का?
3: यूकी गा मिताई देस। 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले हारूजी ने ताम से पूछा,
2: 日本には慣れましたか？
1: जापान की आदत हो गई।
0: ताम ने जवाब दिया,
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद हारूजी ने कहा,
2: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देसु का?
1: जापान में क्या करना चाहती हैं?
0: ताम ने कहा,
3: युकी गा मिताई देसु।
1: बर्फबारी देखना चाहती हूँ।
3: होक्काइडो नी इकिताई देसु।
1: होक्काइडो जाना चाहती हूँ।
0: तब मिया ने कहा,
2: होक्काइडो ई ने।
1: होक्काइडो अच्छा है।
0: ताम ने आगे कहा,
3: अतो तमोदाची नी आईताई देस।
1: और एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
0: हारूजी के सेंसर ने कुछ भांप लिया और उनके गालों पर गुलाबी रोशनी जलने लगी। उन्होंने कहा,
2: ओया?
1: अरे।
0: मिया ने भी देखा कि ताम कुछ अलग लग रही हैं। उसने कहा,
2: डाइजोब?
1: ठीक तो हो?
2: खाओगा खाइयो?
1: चेहरा लाल हो गया है।
0: लगता है ताम किसी खास दोस्त की बात कर रही हैं। खैर, कहानी में आगे पता चल ही जाएगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: युकी गा मिताई देसु,
1: यानी बर्फबारी देखना चाहती हूँ। इसे याद करके आप ये बता सकेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं।
0: इसमें
4: युकी
0: का अर्थ है बर्फबारी और
4: मिताई देसु
0: का मतलब है देखना चाहती हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाकर ताई जोड़ते हैं। क्रिया मिरु यानी देखना का मास रूप है मिमास, तो उससे बन गया मिताई।
0: और अंत में जुड़ा है देस, जिससे वाक्य का विनम्र रूप बनता है। आज की बातचीत की दो अन्य पंक्तियों में भी वाक्य विनम्र रूप में है। एक है
4: होक्काइडो नी इकिताई देसु,
0: जिसका अर्थ है होक्काइडो जाना चाहती हूँ। और दूसरा है
4: तोमोदाची नी आईताई देसु,
0: यानी एक दोस्त से मिलना चाहती हूँ।
1: एक और जरूरी बात ये है कि वैसे तो जापानी भाषा में कर्म कारक है ओ, जो उस संज्ञा के बाद लगता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन कभी कभी ये गा में बदल सकता है, जैसे उन वाक्यों में जिनमें क्रिया के ताई रूप का इस्तेमाल हुआ है।
0: तो वाक्य बर्फबारी देखूंगा को जापानी भाषा में कहेंगे युकी ओ मिमास, और अगर क्रिया का ताई रूप लगाकर बोलना हो कि बर्फबारी देखना चाहता हूँ, तो वाक्य बनेगा युकी गा मिताई देसु।

0: ラーメンが食べたいです。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
2: निहोन दे नानी गस्ताई देस का,
3: जापान में क्या करना चाहते हैं?
2: निहोन दे
1: का अर्थ है जापान में। ये प्रश्न है, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द
2: नानी
1: यानी क्या का उपयोग हुआ है। नानी की जगह आप हारूजी की तरह
2: दोन्ना कोतो
1: का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है किस तरह का काम और भाव है क्या।
2: श्ताई
1: है क्रिया,
2: शिमस
1: यानी करना का ताई रूप।
3: इसके बाद आदमी ने उत्तर दिया,
0: रामेन गा थाबेताई देस,
1: रामेन खाना चाहता हूँ।
3: इसमें
2: थाबेताई
3: है क्रिया,
2: थाबेमस
3: यानी खाना का ताई रूप। तो अब इस उत्तर को बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
2: निहोन दे नानी गा शिताई देस का, रामेन गा थाबेताई देस।
1: अब ये बताने का अभ्यास करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए आप क्योतो के किंग काकुजी मंदिर जाना चाहते हैं, तो ये बात कैसे बताएंगे?
3: मंदिर के नाम का उच्चारण है
2: किंग काकुजी, किंग काकुजी,
3: और क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है
2: इकिमास, इकिमास।
3: तो किंग काकुजी जाऊंगा या जाऊंगी बोलने के लिए जापानी वाक्य होगा
2: किंकाकुजी नी इकिमास।
3: तो अब कोशिश कीजिए।
2: किंकाकुजी नी इकिताई देस, किंकाकुजी नी इकिताई देस।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। ये उसने ताम को शर्माते हुए देखकर बोला था, आप भी याद कर लीजिए।
2: दाइजोबु, दाइजोबु
3: का अर्थ है ठीक हो। इसका इस्तेमाल किसी के बारे में फिक्र जताने के लिए करते हैं। इसका विनम्र रूप है
2: दाइजोबु देसु का।
3: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: निहोन नी वा नारेमाशिता का?日本でどんなことがしたいですか？
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
5: あと友達に会いたいです。
4: おや大丈夫？顔が赤いよ。
1: और अब बारी है अंश हारूजी की सलाह की। आज की बातचीत हारूसान हाउस की बैठक में हो रही थी, इसलिए आज आपको जापानी घरों के बारे में बताते हैं।
3: दोस्तों जापानी घरों की बनावट या कमरों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ दो तरह के कमरे होते हैं, जापानी शैली के कमरे और पश्चिमी शैली के कमरे।
1: पश्चिमी शैली के कमरों का फर्श या तो लकड़ी का होता है या उस पर कालीन बिछा रहता है। उस पर लोग अक्सर कुर्सी और मेज लगाते हैं।
3: दूसरी तरफ जापानी शैली के कमरों में फर्श पर तातामी यानी फूस से बनी गद्देदार चटाई लगी रहती है। लोग तातामी पर ही जाबुतोन गद्दियां लगाकर नीची मेजों के इर्द गिर्द बैठते हैं और फुतोन गद्दे बिछाकर सोते हैं।
1: लेकिन इन दिनों पश्चिमी शैली के कमरे आम होते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में दोनों ही शैलियों के कमरे भी होते हैं, जिनमें से कम एक कमरा जापानी शैली का होता है। तातामी पर बैठना, सोना बहुत अच्छा लगता है।
3: एक और जरूरी बात यह है कि घर चाहे जापानी शैली का हो या पश्चिमी शैली का, जूते मुख्य द्वार के पास उतारकर घर की चप्पल पहनना आम है।
1: और तातामी कमरों में जाते समय तो चप्पल भी उतार कर जाते हैं। इस तरह आप तातामी की खुशबू का आनंद लेते हुए कमरे में आराम कर सकते हैं।
3: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम वियतनाम में बिताए कुछ पुराने दिन याद करेंगी। तब तक के लिए
3: सायोनारा।